मिला रंग का रो बनाया टोटेंग लोन ताला तेरे को ना बंचा बंता कंटाज रे साकी मुताय पंगल गो बंचे टक ये मुताय पंगल गो चे टक बन अब साकी रा सकारित चल क्लो उमर से करो कपन टेंगा